परत्रय परतन रूप कन्नी सुत कन पै लायत बारी खाय। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला, सबो सुत परम है दूजे लग।

0: एक ने आस की दूजे लगे जाए, नानक आसक कांडिये सदिर समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के होने आखिए जेले खैबर ते सोए महला दूजा।
1: सलाम जवाब दवे करे मंदो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए, पौड़ी जित सेवे सुख पाई।

0: एक नहीं दात या पस्ते जो पाई है, नानक साखर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी भोग सुना जाए, नानक सेवक कांडी है, जसे ती खसम समाए पाड़ी नानक।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा

0: की ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।
3: ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਵ ਜੀਵ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੇਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते,

हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

0: हर त्यौहार अपने आप विच इक अहमियत रखता है, सानू बहुत तरह दे सुनेहे दिंदा है। ते अज ईद उल जुहा दा त्यौहार आपां मना रहे हां ते लैंदे हां इस दी जानकारी।
1: ईद उल फितर दा त्यौहार, इस नू ईद उल जुहा भी कहा जांदा है। ए इरशाद है, कहो मेरे रब ने मैनू सीधा राह विखा दिता, कहो मेरी नमाज़ अते मेरी कुर्बानी, मेरा जिउणा ते मेरा मरना अल्लाह दे लई है। जो रब है सारे जहाना दा, कोई उसदा शरीक नहीं, अते मैनू उसदा हुक्म मिलिया है। कुरान मजीद दी होर सूरत अल सफात विच आयत नंबर 102, 103, 104, 105 विच हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अपने पुत्र हज़रत इस्माइल दी कुर्बानी दा जिक्र मिलदा है। सूरत नंबर 102 विच जदों हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहिम दे नाल चलन फिरन दी उम्र नूं पहुँचे तां हज़रत इब्राहिम ने अपने पुत्र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं कहा कि ऐ मेरे पुत्र, मैं सुपना वेख्या है कि मैं तुहानूं कुरबान कर रहा हाँ, हुण तुसीं सो

एक बच्चा स्कूल तो जल्दी घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, क्यों बच्चे आज तू जल्दी किवें घर आ गया? बच्चे ने जवाब दिता, एक मच्छर मार दिता सी ते मैडम ने कहा घर चले जा, दिखी ना मैनू। ते माँ ने पूछा, मच्छर मारन की इनी वड्डी सजा? ते अगो बच्चे का जवाब सी, हाँ माँ मच्छर जड़ा सी ना मैडम ते चेहरे ते बैठा हुआ सी। विज्ञान ने तरक्की करके साढ़े हाथों में मोबाइल दिता है, मोबाइल है, लैपटॉप्स ने, कंप्यूटर्स ने, असी कुछ भी इस से देख सकते हैं, बहुत तरह की जानकारी देख सकते हैं। पर जेकर देखा जाए तो असी प्लस पॉइंट्स भी इस से देखते हैं, पर माइनस पॉइंट है कि इस देश विच वध रहे ने इस से साइबर अपराध, ते लोग हो रहे ने भारी ठगी दे शिकार। साल 2022 विच देश विच साइबर क्राइम दे 65,893 मामले दर्ज किए गए। साल 2023 विच इन्हां विच 31.2% की तेजी आई ते इह संख्या वध के 86,420 हो गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2024 विच इह संख्या वध के 101,998 हो गई। साल 2026 विच इह बुराई रुक नहीं रही ते इसे साल पिछले 3 हफ्तों दौरान सामने आए मामले इस तरह ने कि 14 अप्रैल नूं महाराष्ट्र विच साइबर ठग ने अपने आप नूं एक गैस कंपनी का अधिकारी दस के एक व्यक्ति नूं लुट लिया। फर्जी अधिकारी ने पीड़ित व्यक्ति दा उसका बिल बकाया होने की गल किया कि उस तो ऐप डाउनलोड करन नूं किया ते पीड़ित द्वारा ऐप डाउनलोड करन ते उसके बैंक खाते चों काफ़ी सारे पैसे निकल गए। राजकोट विच एक साइबर ठग ने के मलकान नामक व्यक्ति नूं भेजे वट्सएप संदेश नूं अपने आप नूं कंपनी दा MD दस के 45,00,000 रुपए भेजन नूं किया। इसे तरह 5 मई नूं मुंबई विखे भी इसे तरह 19.74 लाख रुपए किसी बुजुर्ग कोलों ठग लिते गए। 6 मई नूं लुधियाना पुलिस ने साइबर सैल दे साइबर ठगां द्वारा एक व्यक्ति तो 21,00,000 रुपए की ठगी मार लैण दा मामला दर्ज किया। साइबर ठगां ने उसका पैसा कमाउण दा सौखा तरीका दस्या, विज्ञापन दे झांसे विच फसा के कुछ ऑनलाइन टास्क करन नूं कहा ते शुरू विच टास्क पूरा होण ते कुछ रकम उसके खाते विच आई, पर उस तो बाद उसके सारे पैसे निकल गए तकरीबन 21,00,000। सो असी वार वार कहने कि यह ठगी का शिकार असी आप ही होंगे, फिर असी शिकायत करते हाँ कि यह ठगी हो गई है। विज्ञापन के झांसे विच, स्कीमां के झांसे विच, गलत वैबसाइट्स नूं देखना, गलत ऑनलाइन शॉपिंग करना, वैबसाइट्स से जाके पहला देखो परखो फिर ही अगे चलो, नहीं तो फिर शिकायत तो फिर हो ही जाती है। 1930 ते पर उहदा फायदा की है? तुसी लख कल्पो, लख तुसी चीख छिहाड़ा पालो, पर उहदा फायदा की होएगा? सो बेहतर है कि असी बार बार कहने आ, असी बार बार इस करके कहने आ कि इहो जिहे मामले किते रुक जाण, पर जदों असी आंकड़े पढ़ते हाँ, अखबारों विच पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, और बहुत तरह दीआं जानकारियां आस पास समाज विच विचरदे हुए सानूं मिल जांदियां ने, फिर सानूं लगता है कि यह मोबाइल का फायदा की है। जेकर असी प्लस पॉइंट्स नाल देखिए तां सानूं किन्नी तरह की जानकारी मिल जाती है। बस असी यही कहना चाहेंगे।

ये कि ध्यान दो, सोचो, समझो, सावधान रहो, सचेत रहो। प्रोग्राम है सोनी सवेर। एक बच्चा चॉकलेट बहुत खाना सी, उसका दंद खराब हो गया ते कढवाना पिया। डॉक्टर तो वापस आके बच्चे दे पापा ने पूछा, हुण तेरा दंद ठीक है, दर्द नहीं हो रहा? ते गो बच्चे का जवाब सी, पता नहीं पापा, क्योंकि दंद ता डॉक्टर कोल ने। प्रोग्राम है सोनी सवेर।

0: विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी

0: गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब

0: केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा।
0: लड़ीवार नाटक होया

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ, ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
4: फिर तो
5: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ, इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
6: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
4: सर इन्हें कितने लेवा?
6: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लाई।
5: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
4: सर 2 लाख
7: की होया पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हैं। कट दिता।
7: घबराने की लोड़ नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उना नु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
6: आप पैसे गवाओगे, RBI कहिंदा है।
8: जानकार बनो, सुचेत रहो।
9: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेशा प्रोग्राम महक पंजाब दी। आओ सुनते हैं इस अंतर्गत पंजाबी फिल्मों तो गीत। रोज़ाना असी यह प्रोग्राम थोड़े लिए लैके आने सवेरे 8:40 पर। सुनते हैं मुहम्मद फैज़ और निवास विच गीत, फिल्म का नाम है सौंकण सौंकणे।

आओ सुनते हैं अगला गीत ज्योति न्यूरा दिवास विच। फिल्म है एक कुड़ी,

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच 51वीं प्रगति मीटिंग की प्रधानगी की। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टा की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को कौमांतरी सरहदा के 15 किलोमीटर के अंदर सारे गैर कानूनी ढांचे ढाने लई कहा। सर्वोच्च अदालत के कॉलजियम ने 4 हाई कोर्टा के मुख जजा ते सीनियर वकील वी मोहना नू सुप्रीम कोर्ट के जजा वजो तरक्की देने की सिफारिश की। केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने हैदराबाद स्थित कंपनी कोएम्पट एजटेक नू प्रीख्या मुल्यांकन का ठेका देने संबंधी इल्जामों नू रद्द किया। संघ लोक सेवा कमीशन ने पहली बार सिविल सेवावां मुढ़ली प्रीख्या 2026 लई आरसी उत्तर कुंजी जारी की। उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक अपने इतराज़ जमा करवा सकते ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना विखे तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर 14,000 रुपये रिश्वत लेंदे रंगे हत्थी काबू किया। मौसम विभाग ने अज तो पंजाब ते हरियाणा विच कई थावां ते गरज चमक नाल मीह पैण की पेशनगोई की। देश के वख-वख हिस्सों विच अज ईद उल अज़हा दा धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाई जा रही है। बेंगलुरु विच 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप विच मर्दां दे जैवलिन थ्रो एफ 64 श्रेणी विच 2 बार दे पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने सोन तगमा जितया। IPL क्रिकेट दे एलिमिनेटर मुकाबले विच राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नू 47 दौड़ां नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां दा समां सवेरे 10 बजे।

गल कर रहे हैं डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता, स्क्रीन लेखक। बहुत से फिल्मों का निर्माण किया डायरेक्टर के तौर पर, निर्देशक के तौर पर। और राज खोसला होरां दा जन्म 31 मई 1925 नूं होया। पंजाब दे राहों विखे जन्मे, उन्हां नूं एक शास्त्रीय गायक बनने की सिखलाई दी गई सी। और आकाशवाणी ते ओह संगीत स्टाफ वजों काम करदे होए गायक वजों भी काम लभण लई मुंबई आए से। बस इस तों बाद बहुत सारिया फिल्मी हस्तियों नाल मुलाकात हुई और इस तों बाद यह सिलसिला फिर चल निकलिया। राज खोसला गुरुदत्त विजय आनंद दे नाल अल्फ्रेड हिचकॉक स्कूल ऑफ मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर्स तो प्रेरित रहे ते बस इतों ही इन्होंने फिल्मों का निर्माण करना शुरू किया, सीखिया। और फिर राज खोसला जी फिल्म निर्देशक यानी कि डायरेक्टर के तौर पर, निर्माता और स्क्रीन लेखक तौर पर उभर के फिल्मों लिए उन्होंने काम किया और बहुत सारिया फिल्मों इन्हों हिट रही।

बहुत सारे फिल्मा का निर्माण राज खोसला होरां ने किया और 1955 तो पहला ही सफ़र शुरू हो गया, पर 1955 तो उन्होंने एक सहायक के तौर पर काम करना शुरू किया गुरुदत्त और देवानंद नाल मिल के, और फिल्मा रही जिमें कि मिलाप, CID, काला पानी, 16 साल, मुंबई का बाबू, एक मुसाफिर, एक हसीना वो कौन थी, जो कि एक थ्रिलर सी, और मेरा साया भी एक मिस्ट्री वाली फिल्म सी। इसी तरह कुछ होर फिल्म आई हैं जो मर्डर मिस्ट्रीज से आधारित रही हैं, और इन्हां फिल्मों का निर्माण और निर्देशक के तौर पर, स्क्रीन लेखक के तौर पर इन्होंने बहुत सारा इन्होंने काम किया। डायलॉग्स भी ये खुद लिखे इन्होंने, और फिल्मां जिहड़ियां ने इन्हां दा संगीत जिहड़ा है अपने समय का हिट रहा।

0: तुझे साथ ले ले।
1: नाजनी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले, नाजनी नाजनी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

इस से तुसी सानू कॉल कर सकते हो और अपनी फरमाइश का कोई भी गीत सुन सकते हो। असी रोजाना थोड़े लिए हेलो फरमाइश प्रोग्राम लेके आने हैं। ते हम पेशा स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे कैसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
1: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है
2: जी।
1: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
1: जी। ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
2: जी।
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
2: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
2: जी। अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश

0: और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है।
0: सीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
2: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
3: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
2: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
2: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
3: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
2: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
4: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
5: बहन जी, डाकिया।
4: अच्छा, खोलते हैं भैया।
6: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
7: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
6: तो कोई बड़ा है घर में?
7: हाँ, घर पर माता जी है ना।
6: जी बुलाइए।
8: माँ।
4: हाँ।
8: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
4: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
6: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
4: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
8: माँ, माँ,
9: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
4: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
9: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
4: हाँ।
9: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
4: बहू,

0: माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है।
1: हा?
0: मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
2: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
2: ऐसे नहीं,
4: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
0: हाँ माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
6: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
7: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
6: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
7: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
6: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
7: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
6: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
7: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
8: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
9: जी साहब, जी साहब।

0: पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते। चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।

0: 呀。
1: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
2: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: एसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग, असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच 15वीं प्रगति मीटिंग की प्रधानगी की। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को कौमांतरी सरहदों के 15 किलोमीटर के अंदर सारे गैर कानूनी ढांचे ढाने लिए कहा। सर्वोच्च अदालत के कॉलजियम ने 4 हाई कोर्टां दे मुख जजां ते सीनियर वकील वी मोना नूं सुप्रीम कोर्ट दे जजां वजों तरक्की देण दी सिफारिश कीती। केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने हैदराबाद सेहत कंपनी कोएम्पट एजुटेक नूं प्रीख्या मुल्यांकन दा ठेका देण संबंधी इल्जामां नूं रद्द कीता। संघ लोक सेवा कमीशन ने पहली बार सिविल सेवावां मुढली प्रीख्या 2026 लई आरजी उत्तर कुंजी जारी की। उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक अपने इतराज़ जमा करवा सकते ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना विखे तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर 14,000 रुपए रिश्वत लेंदे रंगे हत्थी काबू किया। मौसम विभाग ने अज तो पंजाब ते हरियाणा विच कई थावां ते गरज चमक नाल मीह दी पेशनगोई की। विदेश के वख वख हिस्सों विच अज ईद उल उजा धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाई जा रही है। बेंगलुरु विच 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलैटिक्स चैंपियनशिप विच मर्दां दे जैवलिन थ्रो F64 श्रेणी विच 2 बार दे पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने सोन तगमा जितया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले विच राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नूं 47 दौड़ां नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां। ते हुण पेशा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश लई साडा नंबर है 2342173 और एरिया कोड है जलंधर दा 0181 यानी 0181। ते देखदे हां कौन जुड़े ने। हैलो।
7: हैलो सुप्रीत मैडम जी, नमस्कार।
6: हां जी नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोलदे हो?
7: सुखबीर सिंह छाजरी बोल रहा मैडम, संगरूर तो।
6: हां जी, की हाल चाल ने? अज लगदा पहले कॉल लग गया।
7: मेरा काम ते बग गया जी, मुड़े आया घर।
6: हां जी
7: ਮਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੁੜਿਆ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ।
6: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो
1: सुखप्रीत मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हो
1: जी? मैं मनोहर लाल सुथार एंड कबूल शाह कुबन जिला फाइल का तो बोल रहे हैं मैडम जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया है जी, कृपा है दाते जी।
0: ठीक है, गीत दसते हो नाल ही
1: जी? मैडम जी शोर फिल्म का सुनना है, आवाज महेंद्र कपूर के साथियों की, जीवन चलने का नाम।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश, देखते हैं कौन जुड़े ने। हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, सत श्री अकाल जी।
0: सत
1: हाँ
0: श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: जी, गुरमुख बोलता पिंड पैजी अगला।
0: की हाल चाल है गुरमत जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: वधिया, गीत दस्ते हो?
1: एक बार मुस्कुरा दो जमाने की आंखों में दिखाया, और मोहम्मद रफी साहब।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने लिए।
1: धन्यवाद।
0: ठीक।

0: प्रोग्राम में हेलो फरमाइश हेलो
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम को प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: प्यार भरा गुड मॉर्निंग जी, किसने करी है गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री जी क्या हाल है?
1: जी बहुत बढ़िया, और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया हो गई।
0: चलिए बहुत बढ़िया है। तो गीत बताएं, कौन सा सुनना चाहती हैं आज?
1: जी फिल्म का नाम है यारा ना और गाने के बोले छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदलाई मौसम लगे प्यारा जब सारा ऐसा करके गाने के बोले।
0: चलिए सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: ओके बाय
0: जी।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: बलजीत सिंह, पिंड बजीतपुर भोमा। भैन जी ठीक
0: हाँ जी, की हाल चाल ने बलजीत जी?
1: है? भैन जी, जो एक मैं दो खत पाए है जी, तिखिया मिठिया च,
0: अच्छा ठीक है।
1: उन्होंने एक नू 15 दिन हो गए, एक नू हफ्ता हो गया, तो जवाब नहीं आया जी। 5 दिन हो गए मैनू सुनते नू, लगा रोज सुनता था मैं रोज ही है, पर नौसर साहब बदल जाते, चिट्ठिया उही पढ़ी दी जी।
0: चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि दस देंगे कि चिट्ठियां ये ने उन्होंने पढ़िया जाए। ठीक है, ते
1: ठीक
0: गीत
1: है
0: दस दौ, कि सुनना चाहते हो?
1: जी, गोरी गोरी एक आईया हरी हरी चूड़ियां जी।
0: आज का अर्जुन फिल्म का गीत है। ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद फोन कर ले।

0: गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया।
1: प्रोग्राम में हेलो फरमाइश और साड़ा नंबर है 2342173 यानी 2342173। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
2: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी नंदिनी जी, क्या हाल चाल है आपके?
2: मैं ठीक हूँ और आप कैसी हैं मैम?
1: बहुत बढ़िया। गीत बताएं कौन सा सुनना चाहती हैं आज के इस कार्यक्रम में?
2: मूवी है प्यार किया तो डरना क्या, और सॉन्ग है तुम पर हम ऐड किया रहा, और डेडिकेट भी जानू दीदी को रहेगा।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी रहेगा, आपने वैसे अपना नाम तो बता दीजिए।
1: नाम नाम होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: महेश, हेलो। हेलो,
4: हाँ जी, नमस्कार पायन जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार। फोन करके इधर उधर ना हो सक रहा।
4: पेंट बोर्जर आती जला मानसा तो बोल रहे जी।
3: की हाल चाल ने?
4: हाँ जी, हिंदी फिल्म है जी मोरा, उधर चो गाना सुनना है जी। तू चीज बड़ी है, मास्टर मास्टर।
3: चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन कर ली।
4: हाँ जी, बहुत धन्यवाद थोड़ा जी। साढ़े पिंड बोर्जर आती बेची जी।
3: जी प्रोग्राम है हेल्प फरमाइश, तुसी भी सानू फोन कर सकते हो। साड़ा नंबर है 23-42-173, एरिया कोड है जलंधर दा 0181।

0: प्रोग्राम है। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी,
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हो?
1: मैं सुखदेव सिंह गल, और मेरा पोता जी हर सिंह गल कोटपुरे से बोल रहे हैं जी।
0: केड़ा गीत सुनना सुखदेव जी?
1: जी तो जेठला महीना जी, बहुत गर्मी बुरा हाल कर रखा
0: अच्छा,
1: जी।
0: इस बीच शिकायत करने की की लोड़ है? देखो, गर्मी हुई
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: गर्मी है, जैसे सर्दी
1: कोई
0: होती है ऐसे
1: नंबर
0: सर्दी
1: बनना की
0: करने।
1: दफा थोड़ा जेठ की बरी आवे पावन चले।
0: ठीक है, फिर
1: अच्छा
0: अपना
1: जी,
0: घर रोता ही तो माहिर कहते ने कि घर रहो और अपना आराम नाल खाओ पियो।
1: थोड़ा
0: ठीक
1: धरत
0: है,
1: रहिए जी, जिदा कम कर बिना सरदा नहीं कला जी, कमाने वाला पांच जने खाने वाले क्यों रहूंगा जी। हाँ
0: चलो कोई गल नहीं, काम करते रहो, सेहत याब रहो। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी,
0: फोन करने लाई। साडा नंबर है 2342173, एरिया कोड है जलंधर दा 011, यानी कि 0181 0181 2342173।

0: सो जी, गर्मी तो गर्मी ही है, कोई गल नहीं, रुत रुत दा मेवा है। और देखते हैं कौन जुड़े ने सर नाल। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम.
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से. हाँ,
0: अच्छा, रानू जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ. और आपके क्या हाल चाल?
0: बहुत बढ़िया, फोन करते हो अच्छा हो जाता है। और हमारे पास समय बहुत ही कम रह गया है, तो गीत
1: हाँ, तो
0: बताएं।
1: मूवी का नाम है बेटी नंबर वन और गाने के बोल हैं दिल की धड़कने. तू सुना
0: ठीक है,
1: लीजिए.
0: ये वैसे भी बेटी का ही सॉन्ग है।
1: जी
0: ठीक है,
1: बिल्कुल.
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 10 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगतोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर, रियाज सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आईपीएल

0: क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

राज सहगल, पूजा सहगल, पार्थ ते सार्थक सहगल, ये भी पहुंच गए ने जी। मारहरा दरवाज़ा एटा तो नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम ते यशव, तुहाडा भी तहे दिल तो शुक्रिया। कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा, ये पहुंचे कितों ने? वीपीओ मिड्डू खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब तो। लो जी, फिर तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद ते तुसी हाकम सूफी दे गाए गीत नूं सुणन दी साडे कोल चाह रखी है, ते फिर वो चाहत नूं असी पूरा कर रहे हैं।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

कबीर तिनाल जैजाबीर संधू और पोतरियां वरनीत ते पवनीत पहुंचियां। सारा ही संधू परिवार साढ़े कोल पहुंच चुका है। अगला सुनेहा राकेश नरेश जगदीश अंग्रेज भारती नछत्र सिंह, ये पहुंचे ने जी जंडवाला छतर सिंह तो, जंडवाला चरत सिंह तो है हाजिर होए ने जी साढ़े तक पहुंचे ने। और पीर बन्ना बनोई रोड सुनाम तो दलजीत चीमा मनजीत चीमा राजदीप बलराज राणी डॉली ते सिफत जोत सरा ये पहुंच गए ने जी। पिंड बनवाला हनुमंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका यसिका माता विद्या देवी ते सारा ही मायल परिवार पहुंच गया है। जॉन डेकिस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस जनकपुरी सहारनपुर तो हाजिर ने जी। और मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक ते बलवीर सिंह जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो हाजिर ने। प्रगट सिंह ढिल्लों जत्थेदार प्यारा सिंह कोट शमीर जनक राज कोट शमीर नछत्र सिंह लालवाई दर्शन सिंह पथराला बलदेव सिंह भुखियां वाली और सुखदीप सिंह गिल गुरमीत सिंह लैपो पिंड ढिलवां जिला बरनाला तहसील तपा मंडी तो ये पहुंचे ने। तुहाड़े सारिआं दी रली मिली पसंद ते गुरमीत बावा दी आवाज़ तुहाड़े सामने रेडियो सेट ते पेश करांगी जुगनी और ये पसंद तुहाड़े सारिआं दी रली मिली है।

0: ਤੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार। वसदे विड़े प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोतियां दा मीनू वालों बहुत बहुत स्वागत ते मेरे नाल आज मेरा साथ निभाउण लई।
1: सिमरन सिमरन भी थोड़ा सारे दा बहुत बहुत स्वागत करती है जी।
0: होर दसो सिमरन की हाल चाल ने?
1: हाल चाल बिल्कुल ठीक ने दोनों। तुसी देखो कि मौसम दी जो मिजाज सी उस दे नाल हाल चाल च भी थोड़ा बदलाव आया। सवेरे तो बड़े खुश सां सी भाई, बड़ा सोहनी काली घटा आई सीगी ते बस
0: देखो
1: ओ आई ते ओ गई
0: वैसे देखो मौसम ना सानू तब्दील करन दी ताकत रखता है।
1: जी।
0: जिवें असीं काली घटावां देखियां ने, है ना, काला रंग भी सोहना लगता है।
1: जी जी
0: ते
1: जी
0: जिवें काली घटावां देखियां, ठंडियां हवावां चलियां और मन खुश हो गया। चलो कुछ दिन देर वास्ते ही सही, कुछ टाइम वास्ते ही सही, मन खुश तां होया है
1: जी
0: ना।
1: जी जी
0: ते
1: मीनू जी, मन तो खुशी है क्योंकि तुसी कहोगे कि केड़ी गल दी खुशी है।
0: हाँ
1: देखो
0: दसो।
1: आ जून महीना की छुट्टियां आ रही ने ना, बच्चों
0: बिल्कुल।
1: भी छुट्टियां ने ते जेड़े जेड़े स्कूलों कॉलेजों के बीच काम काज कर रहे उन्होंने भी छुट्टियां ने, है ना। तो अक्सर ये गर्मी दिया छुट्टियां असी प्लानिंग्स करते हैं बढ़िया।
0: बिल्कुल प्लानिंग्स करते हैं, क्योंकि देखो एक सानू भी पॉज चाहिदा, एक टाइम ऐसा चाहिदा सानू जिस दे विच असी मी टाइम अपने वास्ते समा बिता सकीए। खासकर सवाणियाँ जिन्हां दी कोई छुट्टी नहीं होंदी, तुसी देखोगे सवेर तो उठदियां ने ते शाम तक लगियां रहिंदियां ने।
1: मैं थोड़ा इशारा समझ गई जी, ये गल करते पे ने सवाणियां दी जदों गल की ना, थोड़ी देर ली साड़ी शायद रसोई तो छुट्टी हो जानी है ते
0: जी
1: असी बच्चे लेके पेके जाना है।
0: बिल्कुल, पेके जाना है और पेके जा के जो सुकून, जो तुसी कह सकते हो ना तसल्ली मिलती है, वो कितने भी नहीं मिलती। क्योंकि पेकियां दा घर हुंदा ही इदां दा है कि तुहानू बचपन दियां यादां दे विच लैके चलिया जांदा है। तो तुसी जा रहे हो फिर?
1: बिल्कुल जाना तो बनता, जाना भी है, पर देखो प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए है। असी सिर्फ पेकियां की गल की है बई, बड़िया ने प्लान किया होना कि आ छुट्टियां दे विच ना अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। कुछ ने कहा होना है भी सेहत मोटे हैं तो पतले हो जाना, कुछ ने कहा होना है भी पतले हैं तो आपां सेहत बना लैनी है।
0: जी

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: जी, गीत तो बाद मुड़ हाजिर हो गए हैं। तो एक ब्रेक छोटा जा लिया सी, पर सिमर एक गल जड़ी रबी शेरगिल होरा ने कही है कि रूहां दा सुकून बहुत जरूरी है। जिन्ने मर्जी पैसे होण, जिन्नी मर्जी महंगियां गड्डियां कारां होण, पर जे रूहां दा सुकून नहीं है ना, तो तुसी इन्हां दा इंजॉय भी नहीं कर सकते, इन्हां नूं माण नहीं सकते तुसी।
5: ये सच है जी, बिल्कुल। और जिहड़ा सुकून है ना, वह तुहानू बहुत निकी जी चीज़ च गल च ही लभ जाता है। सिर्फ ये है कि थोड़ा जा जिन्नी अज तेज़ रफ्तार है साड़ी जिंदगी दी, उहदे च बस स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा हॉल्ट लैके अपने दिमाग अपने अंदर झाती मार के देखो कित्थे असी ठीक हाँ, कित्थे लालच है, कित्थे असी थोड़ा सहजे हो सकते हैं।
4: बिल्कुल,
5: मैनूं लगदा है कि किते ना किते किसे कोने चो अपने अंदरों ही सुकून लभ जाणा है।
4: ते मैनूं लगदा है कि बहुत ज़्यादा सुकून दे विच ओह लोग भी नहीं जो सेहत पक्षों बहुत तंदुरुस्त ने, जिन्हां दी सेहत नूं कोई रोग नहीं है, जिन्हां नूं डॉक्टरां नूं भर भर के पैसे नहीं देने पैंदे।
5: सही जी, तुसी मैं इशारा समझ रही हाँ। मौसम दे हिसाब नाल ते तुहाडी गल दे हिसाब दे नाल अज रेडियो डॉक्टर है वारी है जी, ते अज सुणदे आ गर्मियां च मौसम दे हिसाब नाल गर्मियां च पेट दे रोग कारण ते इलाज, ते एक्सपर्ट ने डॉक्टर कमलजीत सिंह
4: जी, आओ सुणदे आ।
6: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम च तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। अज दे इस प्रोग्राम च असीं गल करांगे गर्मियां विच होण वाले पेट दे रोग कारण ते इलाज बारे। इस बाबत जानकारी देने लई साडे नाल स्टूडियो च मौजूद डॉक्टर कमलजीत सिंह, जिहड़े कि पेट दे रोगां दे माहिर ने। डॉक्टर साहब, जदों गर्मियां आउंदियां ने ना, ते बहुत सारियां चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने जिहड़ियां सानूं ललचांदियां ने। शुक्र करीदा कि हुण तर खीरे ते निंबू आ गए ने, भावें कि इह 12 महीने रहिंदे ने, पर फिर भी गर्मियां दे मौसम च कुछ ज़्यादा ही चंगे लगदे ने। पर जिथे खाण पीण दीआं स्वादलीआं चीज़ां आ जांदियां ने, उत्थे नाल

0: दाल चौल हो गया या दही हो गया खिचड़ी हो गई, तो ये जरा अफारा इन्हें आपे ठीक हो जाना,
1: आपे ठीक हो जाना
0: ये कोई ज्यादा चिंता वाली अपने दिमाग से बोझ लैन वाली गल नहीं, जिस तरह लोग बहुत परेशान हो जाते हैं मेरा पेट इदा हो गया होर एग्रेवेट हो जाती चीज
1: जी।
0: परेशानी नाल पेट खराब होना ये एक प्रोवन हैगा साइंस के नाल प्रोवन चीज हैगी, जे थोड़ा दिमाग के उत्ते टेंशन होगी ना किसी भी तरह की, तुम देखे होना लोग बच्चे एग्जाम जो पेपर होंगे तो बार बार भजते हैं बाथरूम च, तो वो पेट की नर्व जगह वो दिमाग तो आती हैं, तो परेशानी नहीं होनी किसी चीज़ की, परेशान ना करो अपने आप को, पेट ने काफ़ी हद तक ठीक रहना है।
1: डॉक्टर साहब गर्मियों के मौसम च बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, वो भी खाण पीन की आदत बाहरों लैके कुछ खाधा और खास तौर पर खाना मावा ने कुछ ज़्यादा बना लिया तो फ्रिज च रखने की बजाय गलती नाल बाहर रह गया, सवेरे बनाया शाम को खराब हो गया तो पता भी नहीं लग्या, तो वो खराब खाना भी पेट के कई सारे रोग पैदा कर
0: देगा। बिल्कुल देखो जी इस तरह है कि बच्चों वास्ते खास तौर पर सानू ये वास्ते जागरूक रहना चाहिए कि बच्चों जिथे तक हो सके फ्रैश खाना खिलाओ। मैं तो बाकियों भी यही कहांगा कि जिन्ना हो सकता है ये आदत पाओ, ये नहीं कि तुम तीन चार दो तीन बारी का खाना बना के फ्रिज रखता तेन कढ़ के खाते रहे, वो कुछ खाने के अंदर विटामिन जोड़े होंगे खास तरह के और खास तरह के जोड़े कुछ होर एलीमेंट्स होंगे ने
1: नष्ट
0: प्रिजर्व नहीं रहेंगे, फिर वो जो आप कहने हरी सब्जी का फायदा, वह हरी सब्जी का फायदा उदों है जो असं उन्होंने कुक उस वेले करके और खादा है उन्होंने असी जब खराब होने वास्ते रख दिता तो वह फायदा खत्म हो गया, और खास तौर पर बच्चों वास्ते तो मैं नहीं एडवाइस करांगा किसी ने भी कि अपने खाना बहुता खाना उन्ना बनाओ जिन्ना मतलब खपत हो जाए, थोड़ा बहुत बच गया उन्होंने एक डंग भावें बाज कर लिया, पर उस तो ज़्यादा मैं तुम्हें एडवाइस नहीं करांगा, और बच्चों का खास करके जदों भी तुम खिलाओ सेम प्रकॉशनस बहुत जरूरी है, बच्चों को आदत पाओ कि अपने हाथ धोन, सब तो पहला खाना खाने तो पहला जो असं देखते हैं इंडिया के अंदर साड़ी जी जी हाइजीन लैवल है ना जिन्होंने साफ सफाई का लैवल है वो थोड़ा घट मन देखे है। कोई बंदा भी अजकल बहुत चंगी तरह हाथ नहीं धो के खाने ते टेबल ते या जिथे भी बैठता आता है, सिंपल काम है जी साबुन वो पानी हाथ धो साफ सुथरे कपड़े पूंजो और खाना खाओ साफ सुथरा बनिया कदी पेट खराब नहीं होएगा,
1: यानी कि एक कारण ये भी हो गया कि हाथ के जरिए भी बहुत सारे पेट दे रहे
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: मुंह थानी होकर पेट जाते हैं
0: बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब चलते चलते साढ़े सुनने वाले की कहोगे कि इस मौसम के गर्मियों के मौसम किवें पेट के रोगों तो अपने आप को बचा के रखिए, रब ना करे किसी दस्त लग जाते की किया जाए?
0: अपने आप को बचा के रखो, अपने आप की प्रिकॉशनस ऑबजर्व करो, प्रिकॉशनस पानी पीन वाली चीज़ा बहुत अपने आप में लो, इनफैक्ट हर घंटे डेढ़ घंटे बाद कुछ चीज़ पीन वास्ते ले चलो, साफ सुथरी चीज़ होवे उहदे च शिकंजवी हो गई लून पा के या पानी हो गया या किसी तरह का जूस हो गया, इनू इनक्रीज मतलब हायर मात्रा से रखो, किसी भी फल तो घबराने की लोड़ नहीं, एक खरबूजे तरां खीरे हदवाने ये बहुत हेल्दी चीज़ होंगी है, इन्हों तो डरना नहीं है, बस अगेन ये सिंपल प्रिकॉशन ये है साफ सुथरा होना चाहिए गलिया नहीं होना चाहिए, और इन्हों सारिया प्रिकॉशन के बाद भी जे तो जे तुहानू कदी प्रॉब्लम होए तो अगर शुरुआती प्रॉब्लम हैगी है कुछ घंटिया ठीक हो जाती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है, अगर ये एक लैवल तो उत्ते जाती है और तुहानू लगता जो लक्षण मैं तुहानू दसे सीगे अलार्म वाले लक्षण अगर किसी तरह आते हैं तो देर बिल्कुल नहीं करनी, उस वेले किसी चंगे डॉक्टर की सलाह लो तो कुछ नहीं होएगा बिल्कुल ठीक हो जाओगे
1: जी, इलाज नालों परहेज चंगा
0: बिल्कुल जी,
1: तो आप परहेज पहला ही कर लिए ताकि किसी बीमार ना होइए। तो डॉक्टर कमलजीत सिंह गर्मियों के मौसम च कि पेट के रोग हो सकते हैं और किवें असी पहला ही अपने आप को बचा के रख सकते हैं इस बाबत तुसी सानू बहुत वधिया जानकारी दी, स्टूडियो चाहने लिए रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम च मेहमान बनने लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। सिमर बहुत सोहनी गल कही कि इलाज नालों परहेज़ चंगा है ना, परहेज़ करते करते रहिए, अजकल देखते हैं असं हाथ धोने वो कई बार बच्चे भी मतलब स्लिप कर देंगे ने हटा देंगे ने कि नहीं असी करना इदा ही चीज़ा खा लेनिया, कई बार साडा भी हो जाता कि असं भुल जाने, पर जे असी हाथों नूं चंगी तरह वॉश करके खाइए तो कई बीमारियों तो बचा जा सकता है।
1: लो जी मैं तो ये कहांगी कि इन्हां छुट्टियां दे विच फिर इस चीज़ के उत्ते भी सवाणियां ध्यान देन कि अपने बच्चों ये आदत पा लैन कि उन्हें जदों भी कुछ खाना है तो हाथ जरूर धो के खाण।
2: बिल्कुल सही गल कही, तो जी गल्लां चलदियां रहनगियां, आपां इक गीत वल चलदियां हुण।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।
1: ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
2: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕਥਾ ਲੋਕ। ਕਥਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ।

0: झाड़ू ना कोई पूनी, बस चुप चाप बैठे सोचा विच गुड़ूंद चरखा लैके बैठे। आ छोटी भुंडी ओदा तां ना सिर वाया ना कपड़े बदले, आ वड्डी बबली जड़ी है वह बार मिट्टी कट्टे दे नाल भरी होई सी। वैसे किसी का ख्याल कोई नहीं है बेबे जी ने।
1: पर अज सवेर तो नहीं वेखे, गए किधर?
0: सवेरे तो इत्थे ही सी, आ बार वेड़े च बैठे सी अपने पुराने पीड़े उत्ते, स्लीपिंग रूम दे बिस्तरे हेठा ढो ला के आपां जिहड़ा पुराना पीड़ा रखिया ना आ बूट उपर रखण लई। पीड़े उपर उहना अपने कुत्ते जैक दा गदेला विछाया होया सी। ते बेबे जी दा ना पुराना घगरा पाड़ के विच रूम भर के हले मैं परसों ही जैक लई गदेला बना के लियाई सी। ते मैं पुछया, बेबे जी तुसीं इह बूटां वाली पीड़ी उपर कुत्ते दे बैठण वाला गदेला रख के क्यों बैठे हो? मैं तां किहा वी कि जाओ जाके बैठक च आराम नाल बह जाओ, तबीयत ठीक नहीं है तां अंदर पलंग ते लेट जाओ। पर नहीं, बेबे जी ने तां किसे दी मन्ननी नहीं हुंदी। अखे जी नहीं, मैं तां इत्थे ही बहना।
1: मैं भी सवेरे एक गल नोट कीती सी, जदों बेबे जी बाथरूम चो ना के कमरे अंदर दाखल होण लगे ना, तां उहनां ने सरदर सामने विछे कपड़े नूं हथ नाल इक पासे कीता, फिर अंदर आए। कपड़ा रख्या कमरे अंदर दाखल होण तों पहलां पैर चाड़न लई, पर हैलो मिस्टर खन्ना।
0: आओ जी जी आया नू किते धन भाग साडे, तुसी साडे घर आए हो। तुसी पहली बारी आए हो ना साडे घर? बैठो जी बैठो बैठो, किते सदके जाइए। आ सोफा आ तो हले मैं हुणे ही ले आया है। वैसे जिन्ना भी इत्थे समान पिया ना तकरीबन मैं नवा ही लिया सारा। बैठो जी बैठो बैठो। लिया तुसी कुछ? लो लो लो दो जी, इन्हां नूं भी इधर इधर भी दो जी, दो दो। बैठो जी बैठो बैठो, मैं हुणी आई जरा।
2: हाँ की? हाँ हाँ हाँ, ऑर्केस्ट्रा चालू कर दियो यार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿੜੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के

0: ये प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: फौजी वीरों अंतराल तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। प्रोग्राम दा अगला गीत तुहाडे नज़र करांगी मुन्ना भाई MBBS फिल्म दा। आवाज़ां दित्तियां ने विनोद राठौड़ ते श्रेया घोषाल ने। गीतकार राहत इंदौरी ते संगीतकार ने अन्नू मलिक।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा

0: मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की तीसरी रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज़्यादा अहमियत दें, नीज अवाम और ख़ासतौर पर ख़वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज़्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ़ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज़ है। इस दौरान सिक्किम को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। यह ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के ज़रिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेज़ी लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवेज़, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निज़ाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तावुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम एक तरक्की पसंद वसीला है, जिसका मकसद ज़्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निज़ाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तहान के लिए अजसर नौ जाँच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ़ ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अज़सर नौ जाँच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा।

0: जनाब प्रधान ने कहा कि ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल ज़रूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदेही को बरकरार रखा जाए।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर के वजीर एच के पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि डी के शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नज़दीक अमेरिकी फ़ौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निज़ाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नज़दीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी ज़िला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। DGP राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये त्यौहार पुरअम तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरो खबरों तो बाद फिर हाजिर होए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो रब ने बना दी जोड़ी फिल्म दा गीत। आवाज़ सुखविंदर सिंह दी, संगीत निर्देशक सलीम ते सुलेमान।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे

0: बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा

0: के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। रंगली धरती रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने स्वर्ण यमला जट ते साथी। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ प्रोग्राम च सब तो पहला आर टांगा पार टांगा विच टल्लम टल्लियां।

ज्यादा नहीं बस इन्नी का मोहब्बत है तेरे नाल, ज्यादा नहीं बस इन्नी का मोहब्बत है तेरे नाल, रात दा आखरी ख्याल ते सवेर दी पहली सोच तू है। कुछ लोग हमेशा साढ़े नाल नाल चलते ने ते साढ़े नाल चलते ने ख्यालों के विच साढ़े स्रोते हमेशा ते इस साथ नूं निभाउण दे लई हाजिर है तुहाड़ी होस्ट लव लाइन प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दे नाल। ते प्रोग्राम की शुरुआत विच कुछ फीलिंग्स की गल हो रही है, कुछ जज्बातों की गल हो रही है, भावनावां की गल हो रही है, कौन कर रहे ने गल सुनदे हां इस गीत विच।

परवीन काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल ते काका काठपाल। पिंड अगे चत्रा तहसील जीरा ते जिला फिरोजपुर जगजीत सिंह चत्रा, टहल सिंह, अजीत सिंह सहोता, अजीत सिंह पैंच ते इन्हां दे नाल हरनेक सिंह, बूटा सिंह, कुलदीप सिंह ते लिखारी सभा दे सारे मैंबर साहिबान। ते कोटली कलां तो लिख रहे ने जी यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह। ते बठिंडा रोड डब वाली तो राजेंद्र नरंग, अंजू नरंग ते मोहित नरंग जी की चिट्ठी है जी। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया ते फरमाइश कर रहे ने निमरत खैरा की खूबसूरत आवाज़ के लिए।

0: प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते वेला हो रहे जी इजाजत लैण दा जांदे जांदे कुछ नाम शामिल कर रहे हैं जी कुलदीप कुमार सुमित कुमार विशाल कुमार कविता राणी पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो दोस्त इन्हां दे बलतेज कुड़ियाणा मलोट तो जगतार गिल परमजीत कौर गिल गैवी गिल अमनदीप गिल खाने की ढाप तो शमशेर सिंह इन्हां दे नाल ते बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत अविताज सिद्धू ते जगतार जग्गा धौला किंगरा तो ते गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका बलविंदर विरक जैतिक विरक ते मीका विरक ते राजपुरा तो हरदीप सिंह जगवीर सिंह ज्वाला सिंह ते डॉक्टर धर्मवीर झोरड़ ते ज्वाला सिंह पीरू ते इन्हां दे नाल जगसीर सिंह मैंबर कहिंदे राजपुरा दी सारी पंचायत है पिंड राजपुरा जिला फाजिलका तहसील अबोहर हैगा ते लिखण वाले ने जी चिट्ठी इन्हां ने लिखी है जी पंचकूला तो सैक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान ते राधे भाविक ढींगड़ा इन्हां दे नाल ते वेला हो रहे इजाजत लैण दा लभणे लै गए इजाजत साथ इसे तरह चलदा रहेगा स्टे ट्यून्ड AIR पंजाब
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। पेश है हुण तक दियां 94 खबरां।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन

अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। गुरमत अनुसार सब तो पहला खुदा दा परमात्मा दा नूर ही है जिसने समुचे जगत नू पैदा कीता। पहला उस करते ने चानन रचया ते फिर अपनी अपार शक्ति द्वारा सारे जीव जंत यानी प्राणियां दी सिरजना कीती। जदों एक ही प्रभु दी जोत तो समुचा जगत सारा आलम पैदा होया है तां फिर जात मजहब दे भुलेखियां च पै के किसे नूं चंगा या माड़ा क्यों समझा जावे। परमेश्वर सबना दा पिता है, सारे जीव उसे दी ही संतान हन। उस दी रजा विच रहण वाले, उस दी होंद नूं मनन वाले अपना आपा तक वार दिंदे ने। एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देह दिखाई। श्रवण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया हुआ यह शब्द।

एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। इस शब्द अगायन कीता सी पाई अवतार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। सृष्टि दे आरंभ तो पहला केवल ओ अकाल पुरख ही सी, उस तो बाद उस दे नूर तो कुदरत दे पांत पांत दे जीव सिरजे गए। सब जीव एक समान हन, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। सरवण करदे आं भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

0: अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। इस शब्द का गायन किया सी पाई निर्मल सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगबीर सिंह।
1: प्रभाती अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भुल हो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सर्ब ठाई रहाओ। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारै ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारै। सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कछ होई। हुक्म पछानै सो एको जानै बंदा कहियै सोई। अल्लहो अलख न जाई लखिया गुड़ गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी संका नासी सर्ब निरंजन डीठा। ये पवित्र शब्द भगत कबीर जी की पावन रसना तो उचारण किया होया है। प्रभाती राग की भगत बाणी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 1349 अंग दे उपर सुभाईमान है। प्रभाती राग की भगत बाणी विच भगत कबीर जी के कुल 5 शब्द हैं। पहले शब्द विच भगत जी ने परमात्मा के पवित्र नाम की महिमा दृढ़ करवाई है। कहत कबीर किल विख गए खीना मन पया जग जीवन लीना। दूजे शब्द विच भगत जी दे समकाली ताकतवर धार्मिक लोकां दे टाकरे प्रति इनकलाबी बोलां दे राहीं कुछ सवाल पुछे गए हन। काजी अते पंडित दोवें ही धार्मिक शख्सीयतां भगत जी दे सवालां दे जवाब दे हन। काजी ताईं सवाल है अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा। जे परमात्मा खुदा सिर्फ मसीत विच ही वसदा है ता जो होर धर्म अते धार्मिक स्थान हन उत्थे कौन है। अगला सवाल काजी अते पंडित दोहां नूं सांझा है। दक्खण देश हरी का बासा पछम अल्लाह मुकामा। भगत जी फरमान करदे हन हिंदू मत मनदा है कि परमात्मा केवल दक्खण दिशा विच अते इस्लामी मत मनदा है कि खुदा केवल पछम दिशा विच काबे अंदर ही वसदा है। भगत जी फिर दोहां नूं सांझे तौर ते कहा है कहां उडीसे मज्जन किया क्या मसीत सरनाए। दिल में कपट निवाज गुजारै क्या हज काबै जाए। दिल विच कपट रख के परमात्मा नूं कित्यों भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगत जी परमात्मा बारे सनातन मत अते इस्लामी मत बारे विचार वटांदरे राहीं फरमांदे हन कि परमात्मा एक है अते सानू सारिआं नूं एक दी शरण विच पैणा चाहीदा है तां ही साडा जीवां दा उधार हो सकदा है। परमात्मा भी एक है अते उस वल्लों पैदा कीते जीव जंत भी सब एक हन। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। पहले पहल अल्लाह खुदा एक नूर ही है अते उस नूर तो ही कादर दी कुदरत सब जीव जंत पैदा किते हन। जगत अंदर सृष्टि दी रचना कीती है ता फिर जातां रंगां नसल

0: तेरी बैठा कट कट अंतर तू है वोठा सभे साजी वाल सदायन तुम किसे न दिसे बाहरा जियो। इस शब्द गायन की तासी पाई गुरमेल सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
2: ਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चावान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आ हुण तुहानूं दस्सदी अज रात तक प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना सुनोगे रात 10:02 ते। अज दे इस प्रोग्राम च कलाकार होंगे पंडित जितेंद्र अभिषेक की, जो कि शास्त्रीय गायन पेश करनगे राग हेमंते। साढ़े 10 प्रोग्राम सुनोगे सरगम। शाम 6:20 ते तुसीं सुनोगे प्रादेशिक खबरां। 7:30 होणगीआं पंजाबी च खबरां। 8:45 ते दिल्ली केंद्र तों सुनोगे समाचार संध्या। 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड, 9:45 ते इनसाइट, ते रात 11:00 दिल्ली केंद्र तों सुनोगे हिंदी च समाचार, 11:05 ते अंग्रेजी च समाचार। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं आ हुण सुनदे हां देश गान।

0: हां जी रुलिया राम जी,
1: संधू साहब बच्चों वाले आप सारे जानते हैं, जिदा सियाने भी कहें भी खाइए दाल जी निवे हड्डा के नाल। हुण दालां दी काश्तकारी एक बहुत अहम विशा इस करके बन जाता है कि साढ़े शरीर लई ते धरती की सेहत लई
0: दोनों काम करते हैं जी,
1: दोनों लई फायदेमंद है दालां, है कि नहीं। सो इस करके दालां दे विच हुण जिदा बड़ा अनुकूल समा है अरहर, है ना, अरहर की काश्तकारी का जो सोयाबीन की फसल है उदा अरहर की जी फसल है
0: बड़ी महत्ता है जी, यदि तो इन्नी महत्ता है ना, अपने ना साउथ चले जाओ,
1: हाँ
0: सांबर च बड़ी पैंदी है बनता है नाल,
1: होर भी बड़े जिदा कहने के अरहर तो बहुत सारिया चीजा जो पदार्थ तैयार कर लेंगे है। गल यही है कि तुम ओनू सोच न लाने किस पास। सो अरहर की काश्तकारी बाबत डॉक्टर हरप्रीत कौर होना जानकारियां साझा की आप साझा करते। डॉक्टर हरप्रीत कौर विरक जी, सब तो पहलों देहाती प्रोग्राम की बैठक तुहानू जी आया कहने। डॉक्टर साहब दालों की जो आप गल करते हाँ, क्योंकि एक तो कई पक्षों तो दालों साढ़े लिए महत्व रखदियां ने, अज की खेती आ अजोकी खेती दे जो आप गल करते हाँ, क्योंकि एक तो साड़ी जिहड़ी फसली जमीनी जिहड़ी आपां लोड़ कह सकदे कि जमीन की सेहत नूं बरकरार रखण लई आपां कहिंदे कि दालों की काश्त सानूं करनी चाहीदी है। दूजा यह है भी भाव भंता दालों का कित्थे पहुंचा है, वह भी आपां सारे जानदे आ, ते घर की दाल जिहड़ी घर की दाल है। कुल मिला के यह है कि अज की खेती के दालों का महत्व साढ़े लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुसीं तां देखो एक माहराना खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी नाल ताल्लुक रखते हो। इस टाइम जे आपां दालों की जे स्थिति की गल करते हैं पंजाब दे विच, क्योंकि आम तौर पर झोना कणक झोना इस फसली चक्कर च बहुत घट किसान है, बहुत घट रकबे दे विच जिहड़ा है दालों नूं लैके आ रहा है, की स्थिति अजकल?
2: तुसीं बहुत वधिया सवाल किया कि आपां जिस तरह जानते हैं कि कणक झोना जिहड़ा फसली चक्कर है जिहड़ी सौनी रुत्त की फसल है, ज़्यादातर पंजाब च झोना लगता है, तो किन्ना तकरीबन 35 लाख हैक्टेयर एरिया जिहड़ा झोना

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

अमरजीत सिंह सागर दी आवाज़ च सुन रहे सी ये गज़ल। आओ अगली गज़ल सुनते हाँ। आवाज़ दिती है बशीर लोन, बशीर भवानी ते मुजामिल भवानी ने।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स डीआरएम 864 किलोहर्ट्स एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीए दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाई जलंधर केंद्रे तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो आओ सुनते हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है

जी दोस्तों, हाजिर है थोड़ी अपनी दोस्त कविता प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लैके। कहिंदे ने कि जिथे गल्लां हुंदियां ने दिल दियां, यादां दियां, हासियां दियां, ते उन्हां छोटियां छोटियां खुशियां दियां जिन्हां नूं असीं रोज़ दी भज दौड़ वाली जिंदगी विच असीं भुल जांदे हां। क्योंकि अज दा इंसान ऑनलाइन तो बहुत है, पर कई बार इमोशनली ऑफलाइन हो गया है। इस करके अज असीं गल करांगे मुस्कुराहट दी, रिश्तियां दी, ते सैल्फ लव दी, ते उन्हां पलां दी जिन्हां करके जिंदगी सचमुच हसीन लगती है। उस तो पहला सुनते हाँ विशाल मिश्रा ते सोम दी आवाज़ दे विच एक गीत।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ।

गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की

0: केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ध्यान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र

0: करना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर

0: हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खास तौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खास तौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए, तो ये बहुत जरूरी है। सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं।

0: आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान जैसा आपने कहा बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की।

0: रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खास तौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें, ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens.

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स, एफएम 103.6 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीए दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 10 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136

0: से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो।
1: हेलो सर, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: चाकू गौर
0: ते गीत दी फरमाइश दस दो जी, गीत केड़ा सुनाइए जी?
1: अफजान ठग मोमेगा मोहम्मद रफी साहब का सुने
0: गीत केड़ा जी?
1: मतबली यार कोई नहीं।
0: मतलब दी ये दुनिया यारो।
1: हाँ
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी। जरूर सुनावांगे तुहानू तुहाडी फरमाइश का गीत, ते कुछ स्नेहे भी शामिल करते हैं जी। मजनू का टीला तो कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश तो उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक ते माही मलिक। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक करण, गीतू निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। सुनना चाहते हरजीत हरमन का गीत, ते इस गीत मोहम्मद रफ़ी दे मतलब दी ये दुनिया यारो दे बैक टू बैक हरजीत हरमन की आवाज़ च गीत जरूर सुनावांगे जी।

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: मनजीत कौर बोल रहे हैं, दिल्ली तो जी।
0: ते गर्मी वधाई जा रहे हो दिल्ली च?
1: होने होने ना, थोड़ी बारिश हुई है ते कुछ ठीक लगे, अच्छी
0: क्या
1: गर्मी
0: बात
1: तो
0: है
1: बहुत
0: जी।
1: है।
0: ते सुनने वाले दोस्तां नू वैसे ही गर्मी तो राहत मिलदी महसूस हो रही होनी है कि चलो किते दा मीह वरिया।
1: हाँ जी, हाँ जी, नहीं होने थोड़ी देर भरिया पहले, एक कुछ हवा ठंडी आ रही है तो अच्छा लग रहा है,
0: ठीक है
1: नहीं
0: जी,
1: गर्मी तो बहुत है। हाँ
0: कुदरत दे रंग है ते सारे रंग जरूरी है,
1: जरूरी है, सही गल है।
0: क्योंकि जे ये बारिश गर्मी तो
1: हाँ
0: बाद
1: जी,
0: नहीं पेगी तो बारिश का मुल नहीं पैना, ते जे गर्मी नहीं पेगी ते अंब खान का मुल नहीं पैना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: गीत
1: देखो जी, जिंदा बंदा ते सारे रंग देखने में
0: बिल्कुल जी, क्योंकि
1: हाँ,
0: जेड़ा भी मौसम आए ना आदमी उससे तो नाराज रहिंदा वे।
1: ठंड ज्यादा दे
0: हाँ
1: देता।
0: जी, गर्मी च सर्दी चाहिए है ते सर्दी च गर्मी चाहिए है जी।
1: हाँ, बस
0: गीतकार
1: होना
0: दा
1: वही है जो वाहेगुरु नु मंजूर है।
0: बिल्कुल जी, मालक दी मर्जी तो बाहर कुछ भी नहीं है जी। ते केड़े
1: नहीं जी, नहीं कुछ नहीं, नहीं सही गल है।
0: सिंगर दा गीत सुनाइए जी?
1: गीत सुना दो, बिल रखिएगा।
0: जरूर सुनावांगे। इसे तरह अपनी फरमाइश लै के AIR पंजाब दे नाल जुड़ते रहा करो। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: ठीक है, थैंक यू, तुहाडा भी बहुत धन्यवाद।
0: कुछ सुनेहे भी शामिल करते हैं जी जेडे व्हाट्सएप राही आया जी। सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर तो, गांव फ्रांसी, जिला हिसार तो, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पिंदर कुमार डुड्डी, मोहन चंद्र डेनेवर कोलोराडो USA तो, ये सुनना चाहते हैं अमरिंदर गिल का गाया कोई भी गीत। ते इन्हां दी फरमाइश सुरजीत बिन रखिए दे गाए घुंगरू तो बाद जरूर पूरी करांगे जी।

0: हेलो।
1: हेलो सुनील सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी, गीत केड़ा सुनाइए जी, ते
1: मेरा कॉलोनी तो धर्मा सागर बोल रहा सर जी,
0: गीत दी
1: फाजिलका का।
0: फरमाइश भी दस दो जी।
1: गीत कोई मर्जी सुना दे सर जी,
0: चलो जरूर
1: अपनी
0: सुनाने
1: मर्जी।
0: हैं जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद सर जी।

दोस्तों इंद्रजीत मंगा, नीलम मंगा, पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया तो फरमाइश सी बब्बू मान दे गाए गीत दी, सो उन्हां दी फरमाइश पूरी कर दें जी। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, गाए कलाकार बब्बू मान।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है जी
1: हेलो
0: प्रोग्राम च।
1: सर।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: बहुत
0: होर सुनाओ बिट्टू जी, केहो जिहा बीते आज दा दिन?
1: बढ़िया
0: गर्मी ने कढ़ाते पूरे वट,
1: बिल्कुल
0: गर्मी ने कढ़ाते वट जी।
1: जी बिल्कुल
0: ते गीत केड़ा सुनाइए जी? आशा
1: जी
0: भोसले ते जसपाल सिंह दा गाया होया जी।
1: हाँ जी
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: ओके जी बाय।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: प्रीतम
0: ते प्रीतम जी, होर सुनाओ की हाल चाल है तुहाडा ते तुहाडी खेतीबाड़ी दा?
1: लक्कड़ वधिया रेट बढ़िया हो
0: क्या बात है जी, चलो तुहाडी खुशी च होर इजाफा करते हैं। तुहाडी फरमाइश दा गीत सुनानी है सारे दोस्तां नूं, ते फरमाइश दस दिओ जी।
1: ज्यादा।
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: मिस पूजा का नवा गीत साढ़े यूके के बहुत मशहूर।

0: हेलो।
1: ते अपने बारे दस दो जी, गीत केड़ा सुनाइए जी। हेलो,
2: हेलो। सत श्री अकाल सर जी। सर
1: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी।
2: जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ का।
1: ते

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार अश्विनी जी।
0: नमस्कार जी।
1: श्री गुरु रविदास नगर मरोड़ तो कीर्तन रखनी है जी।
0: तो होर सुनाओ फकीर चंद जी, की हाल चाल है ते फरमाइश भी दस दियो जी।
1: बहुत बढ़िया जी। होर जलंधर का मौसम किदा ना? इधर तो मन ठंडा हो गया मौसम जी, मलोड़ से ना
0: नहीं, जलंधर हाली गर्मी है जी, तो तुसी फरमाइश दसो जी, आप गीत ठंडा ठंडा
1: जो
0: सुनाने
1: जो
0: हैं।
1: हनी सुना दो जी।
0: जरूर सुनाने हैं जी, फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: थैंक यू जी।

हेलो हेलो हेलो। खैर कोई गल नहीं जी, अपने कॉलर दोस्त के नाल साडी गलबात तां नहीं हो सकी, पर उन्हां दी जिहड़ी फरमाइश सीगी सुनना चाहते सीगे, सतविंदर बिट्टी दी आवाज़ च बोलियां वो असी जरूर पूरी करांगे जी। पर ये एक दो सुनेहे भी शामिल करते हैं जी। फाजिलका पंजाब तो भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा ते इन्हां दा पूरा खेड़ा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो रजिंदर कुमार ते मलकीत कौर। गीत दी फरमाइश सतविंदर बिट्टी दी आवाज़ दी जरूर पूरी करदे हैं जी।

आचे ते पवना पया, पवने ते जल हुए, जलते त्रिभुवन साजिया, कटकट जोत समोए। ए फरमान सृष्टि दे रचायता, कुल कायनात दे परवरदिगार, अकाल पुरख, ते उसदी रचना दी महिमा बयान करता है। ओ अकाल पुरख कितना कु वड्डा है, कितना वड्डा उसदा विस्तार है, इस दे बारे विच कोई भी अंदाजा नहीं ला सकिया। उसनू अपनी अपनी बुद्ध अनुसार वड्याया जांदा है। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ जीरा। इस पावन रचना दा गायन कीता है भाई अवतार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। इस पावन रचना का गायन किया सी भाई अवतार सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। कुदरत दा रचनहारा कादर कुदरत नू रच के उसदे विच ही समोया होया है। उसकी अपार बख्शिश का अंत नहीं पाया जा सकता। तरत आकाश पाताल सबनी थाई वो व्यापक है। उस तो वारने ही जाया जा सकता है। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या। सरवण करदे हां भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों इस श्लोक दा गायन।

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या। इस श्लोक का गायन किया भाई इकबाल सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी खड़क सिंह।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न होई, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। रहाओ जात मह जोत, जोत मह जाता, अकाल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहया। आसा दी वार दा ए पावन श्लोक पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दी पावन रसना विचों उचारण कीता होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 469 उपर सुभायमान है। विचार अधीन इस श्लोक दियां रहाव वालियां पंक्तियां विच संपूर्ण आसा दी वार दा केंद्री भाव दर्ज किया गया है, जो इस प्रकार है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। रहाओ अर्थात कुदरत विच वसदे होए हे मालक प्रभु जी, मैं तेरे तो कुर्बान जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ, तेरा अंत मेरे कोलों नहीं पाया जा सकता, क्योंकि तू बेअंत गुणा दा मालक है। परमात्मा दी रची हुई संपूर्ण सृष्टि नूं गुरबाणी विच कुदरत आख्या गया है। कुदरत दी रचना करन वाला कादर शक्ति अते प्रकाश दे रूप विच हर थां व्यापक हो रहा है। आसा दी वार अंदर ही रचे हुए एक होर श्लोक अंदर गुरु नानक देव जी कादर अते कुदरत दी सुमेलता दी व्याख्या बड़े सुंदर ढंग नाल करदिआं इस तरह फरमाउंदे हन। कुदरत दिसै कुदरत सुणीऐ, कुदरत भौ सुख सार, कुदरत पातालीं आकाशी, कुदरत सर्ब आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबां, कुदरत सर्ब विचार, कुदरत खाणा पीणा पहनण, कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पाणी बै संतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादिर करता, पाकी नाई पाक, नानक हुक्मे अंदर वेखै वरतै ताको ताक। अर्थात सानू जो कुछ दिखाई देंदा है अते सुनाई देंदा है ओ कुदरत दा ही रूप है। रब्बी डर अते श्रेष्ठ सुख भी कुदरत दा ही नज़ारा है। पातालां आकाशां विच अते संपूर्ण सरगुण पसारे विच रब्बी कुदरत दा ही निवास है। वेदां पुराणा कतेबां अते होर धार्मिक ग्रंथां दी कथा विचार विच भी रब्बी कुदरत दी रहनुमाई है। जीवां जंतुआं अते उन्हां दियां वख-वख जातियां किस्मां अते रंगां विच भी रब्बी कुदरत ही चलकारे मारदी है। चंगियाईयां बुरियाईयां आदर सत्कार अते हंकार दी बोली विच भी रब्बी कुदरत दा ही रूप झलकदा है। हवा पाणी अग अते मिट्टी आदिक पंज तत्तां विच भी कुदरती शक्तियां ही काम करदियां हन। हे कुदरत नूं पैदा करन वाले प्रभु पिता जी, सारी कुदरत तेरी अपनी ही है। तू कादर करता है अते तेरा नाम सब तो पवित्र है। तू अपने हुक्म अंदर अपनी रची हुई कुदरत नूं आप ही देखदा है अते उस विच वरतदा है। इसे प्रथाए राग बसंत हिंडोल विच पंचम गुरदेव गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन कि हे प्रभु जी, तू अपनी रची हुई कुदरत विच वस के कुदरत दी विशालता अते उस दे गुणा नूं आप ही जानदा है। कोई होर दूजी हस्ती जां शक्ति तेरी कुदरत दी विशालता नूं नहीं जान सकदी। जिस मनुख उत्ते तू अपनी कृपा दृष्टि करदा है वह तेरी कुदरत दे राहीं तेरे नाल जुड़दा है अते तेरे निराकार रूप नूं पछाण लैंदा है। फुरमान इस प्रकार है, तेरी कुदरत तू है जाने और ना दूजा जाने, जिसनों कृपा करें मेरे प्यारे सोई तुझे पछाणे। व्याख्या वाले शब्द की आरंभक पंक्ति इस प्रकार है, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई। अर्थात हे प्रभु जी, तेरी आश्चर्य कुदरत नू नीज ला के वेख्या पता लगता है कि मनुखी जीवन में पैदा होने वाले दुख मुश्किल

मन वजद विच आके सोने प्रभु नू लाल जीओ कह के भी संबोधन करता है। मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। सरवण करदे आ भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता गया ए शब्द।

मेरे लाल जियो, तेरा अंत न जाना। तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गोपाल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे वालों गायन किया हो।

ताण दिबाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाऊ नाही जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ए बेनती रूपी बचन जीव रूपी स्त्री दे हिरदे दी वेदना है, उस खसम प्रभु ते अटल भरोसा है, अटुट विश्वास है। ताही ता जीव रूपी स्त्री उस अकाल पुरख प्रभु दे चरना विच अरदास बेनती जोदड़ी करती है। दरअसल अरदास शब्द अरज अते दास्तान दो शब्दां दी संधि है, पर गुरमत विच ए संधि केवल शब्दां दी दास्तान नहीं है। ए जीव रूपी स्त्री ते खसम प्रभु विचकार संधि है। इसे करके समग्र सृष्टि दे जीव हर वक्त अपने जीवन दी दिनचर्या उस अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच अरदास करके आरंभ करदे ने, ते संध्या वेले भी अरदास करके उसका शुकराना अदा करदे ने। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां विच पंचम गुरदेव फरमाउंदे ने, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। सरवण करदे आ भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। इस शब्द गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। गुरमत अनुसार अरदास पूरन दृढ़ता दे नाल उस अगे करनी चाहिदी है जो सर्व कला समर्थ है। तांते फिर सर्व कला समर्थ केवल ते केवल अकाल पुरख प्रभु ही है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी समुची बाणी बेनती रूप विच है, जा इंज कह लईए तुरकी बाणी दे विच अरदास दा सही स्वरूप उत्तम जुगत भगत साहबान गुरु साहबान ते होरना महापुरशा ने सुचजे ढंग नाल दर्साई है। सुनदिया तीरथ सिंह ढिलों होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच अरदास दा संकल्प।
1: गुरबाणी फलसवे मुताबक गुरसिख ने हर दुख सुख विच अकाल पुरख दे सन्मुख एकाग्रचित हो के अरदास करनी है। हरेक धर्म विच अरदास दी महत्ता नूं प्रवान कीता गया है अते इस ते कई नां हन, जिवें जोदड़ी, अरजोई, बेनती, दुआ, प्रेयर, प्रार्थना अते अरदास। सिख धार्मिक मानतावां मुताबक श्रद्धालु ने नाम दी प्राप्ति, विषय विकारां दे जंजाल तों मुक्त होण, आत्मक बल प्राप्त करन हित अते निजी अर्थात संसारिक कारजां दी सफलता ते कामयाबी लई सतगुर पास बेनती आदि महावाक मुताबक अरदास बेनती करनी है। अरदास निमाणे निताणे हो के पूर्ण समर्पण भावना नाल करनी है। जिवें गुरवाक है, तू ठाकर तू पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते हुए स्वाग्याकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुरबाणी। बाणी गौड़ी श्री सुखमनी साहब। सरबत दे भले लई अरदास करन वाला जाचक करते दा इस गल्लों भी धनवाद करता है कि उसने अपार बख्शिश करके मेहरामत करके उस दी जिंदगी दे कई पहर रब्बी पाणे विच लंघवा दिते ने। अते दोएकर जोर करो बेनती दे महावाक अनुसार वो अरजोई करता है कि बाकी दा रहिंदा जीवन भी रब्बी रज़ा अंदर राजी रहिंदियां शाकर हो के गुजरे। अरदास दा असल मकसद ते मनोरथ संसारक मंगा अते लोड़ां गरजां दी पूर्ति लई बेनती करना ही नहीं, बल्कि इस दा असल मकसद ते उद्देश जो कुछ सानू अकाल पुरख तो प्राप्त होया है उसका रोम रोम कोटान कोट धनवाद करना है। दीवान नंद लाल गोया तनखाह नामे विच करड़ी ताकीद करते ने कि गुरसिख अते रब्बी जुड़े नू उठद्या बैठद्या अरदास करनी चाहीदी है। वो किसे कार्ज नू भी अरदास तो बिना पूरा होया ना समझे। इसलिए आप हुदरा अते मनमती सिख गुरु नू पौंदा नहीं। अरदास करते दी हस्ती नू अपने सन्मुख जान के अपने आप नू उसदे ताबे रखण दी भावना नाल कीती जावे। गुरवाक है, तू अथा अपार अत ऊचा, कोई अवर न तेरी पाते। यह अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सानू संसारिक प्राणियों नू सुचेत अते चितन करदे ने कि अरदास करन लग्या प्रथमे मन विच हलीमी भाव पैदा कीता जावे ते फिर आपा समर्पण कीता जावे। मुखवाक है, नानक एक कहे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। अरदास करन दी युक्ति दृढ़ कराउंदिया दूजी पातशाही गुरु अंगद देव जी मार्गदर्शन करते हैं कि जग्यासु या अरदासिया खलो के अरदास करे। गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 1093 ते आप जी दे इस प्रथाए अमलीक बचन

आपे जाने करे आप आपे आणे रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। पंजवें पातशाह इसनू होर स्पष्ट करदिआं सेध प्रदान करदे ने कि अरदास करन समय हलीमी अते निम्रता वजों हथ जोड़ के बेनती कीती जावे। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 736 ते आप फरमान करदे हन, दोयकर जोड़ करो अरदास तुद पावे ता आणे रास। ये गल भी ध्यान विच रखनी बनती है कि अरदास बेनती एकाग्र चित समर्थ प्रभु अगे हूक जोदड़ी तरला मिन्नत अते प्रार्थना है। ये कोई रसम जां उपचारकता नहीं है, क्योंकि अरदास विच जुड़ना एक अति सूखम अते पवित्र ते सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सच्चे मनों कीती अरदास जरूर पूरी हुंदी है। इसकी मिसाल इतिहास विच मिलती है कि जदों सन 1976 की भयानक गर्मी विच समुचा इंग्लिस्तान पानी की अत्यंत थुड़ों कारण कुरला रहा सी, तां उत्थे वस्तियां सिख संगतां ने एडी भावपूर्त अरदास गुरु सन्मुख कीती जिहड़ी एक कौतक जां चमत्कार हो निबड़ी। इधर साउथ हाल दे गुरु घर विच अरदास उपरंत पवित्र हुक्मनामा लिया जा रहा सी, ते उधर दूजे बन्ने बाहर बिल्कुल साफ वातावरण विच्चों एक बदली प्रगट होई जिहने झड़ी ला दित्ती। पलां विच इंग्लैंड दी कई सातियां तों सुक्की अते खुश धरती विच्चों भरवीं बारिश नाल खुशबूआं ने माहौल नूं मुअत्तर कर दिता। सारे पासे आनंद छा गया। इस बारे उर्दू दे एक शायर दा कथन है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से होती है। बहुते लोग अरदास करन वेले शरीरक रूप विच तां उत्थे मौजूद हुंदे हन, पर मन उन्हां दा किते होर भटक रिहा हुंदा है। ये महज रस्म हो के रह जाती है। इसे विचार नूं गुरबाणी इउं दृढ़ करवाउंदी है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। निमाणे बन के न्यासरे बन के अरदास करन नाल मनोचिंदे फल सहजे ही प्राप्त हुंदे हन। जदों सारे हीले वसीले काम ना आउण तां गुरबाणी तों अगों लई इह रहनुमाई प्राप्त हुंदी है, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। आदि ब्याद अते उपाद इन्हां तिन्नां रोगां अते तापां संतापां ने समस्त संसार नूं अपनी पकड़ विच अते गिरफ्त विच बुरी तरह जकड़िया होया है, नूड़िया होया है। इन्हां तों छुटकारे दा रस्ता पूरे गुरु सन्मुख अरदास बेनती ही है। गुरवाक है, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघ न को लागे या कि प्रभ आगे अरदास। अजोके मनोविज्ञानी भी इस तथ्य नूं स्वीकार करदे ने कि सच्ची अरदास मनुख नूं आत्मक तौर ते बलवान ते शक्तिशाली बनाउंदी है, जिस आसरे मनुख मात्र अकाल पुरख नाल नेड़ता हासिल करदा है, भाणा मनना सिखदा है अते जिंदगी दे उच्चतम अते रूहानी निशानियां तों लांभे नहीं जांदा। सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवां प्रभ चरण तुम्हारे। साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वलों रचित कवि उवाच बेनती चौपई अरदास दा आदर्शक अते उत्कृष्ट रूप है। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काहो, आप हाथ दे मुहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभै करतारा। अते अंत विच आप निचोड़ कढ़दे हन, खड़ केत मह सरन तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी, सर्व ठौर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। जदों अवस्था ये बन जावे, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया, अते सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाजस गोविंद।

प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। इस शब्द गायन कीता सी भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

संग न कहो दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दहु कर चारो मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख उलटत जात बिरह की शार दीन दयाल पुरख प्रापूरण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो हे भगवंत

मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बैती जात रहदे ना बिचारो, रथ न असम न गज सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर।

रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर।

पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण।

0: सदा बलहारी।
1: आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग, पावक जर्यो ना जात रहो जन तूर लग, नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग, नानका रोगा दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
2: उद्यम कर लगे बहु पाटी बिचरे अनक शास्त्र बहु खटुआ, पसम लगाए तीरथ बहु प्रमते सुखम दे बंदे बहु जटुआ, बिन हर पयन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चकर करत सोमपा का अनिक पांत थाटे कर थटुआ।
3: सतगुर खे माताणिया जुग जूत समाणे, अन पाओ ने जा नाम टेक जित भगत अघाणे, गुर नानक अंगद अमर भगत हर।

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौते जी सहाय वार। श्री भगौते जी के पातशाह दसवें प्रथम भगौते सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर।

पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शबद चौंकी आनंद।

फिक्को फिक्का सदिया फिके फिकी सो फिक्का दर के सटी है मोथुका फिके पाए फिक्का मुरखा खिया पाण लह सजाए महल।